कितने अरमान मचल रहे हैं। दुनिया में झील की गहराइयां सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे